0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 2:30.
3: FM 89.
4: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर. अभी सिर्फ 500 रुपए में ऑफर लगाओ, 3000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ, अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार. जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें.
5: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस. जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
6: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
5: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक.
6: जो तुम चाहो,
5: डाउनलोड दी ऐप नाउ.
7: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट. मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर.
4: मुबारक हो, यूफोन एंड टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिलीज मिलकर हो गई हैं मोर देन 7 करोड़. तो यूफोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यूफोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर.
0: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
8: No talk. Just you
9: and the music.
8: Back to back
9: starts now.

0: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर. अभी सिर्फ 500 रुपए में ऑफर लगाओ, 3000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ, अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार. जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें.
1: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट. मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर.
2: City FM 89, we're playing your song.
3: Everybody go.
4: Hold on, special delivery coming through.
5: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
6: We're now live on WhatsApp.
7: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
6: It's as easy as 03142-898989.
5: Save our number now and WhatsApp us.
2: City FM 89, we're playing your song.
8: It's all good.
6: You're listening to
9: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 3 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: You're listening to City FM 89.
5: Trending today.
6: Meta is once again going after revamping Instagram's recommendation algo to boost original content and penalize accounts that lift posts from others. With the change, accounts that reshare photos or carousels without material edits could see their reach throttled.
4: City FM 89.
7: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून तो ले आए मॉसपेल क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट मॉसपेल मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर
8: मुबारक हो यूफोन एंड टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिलीज मिलकर हो गई हैं मोर देन 7 करोड़ तो यूफोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यूफोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर
4: City FM 89 We're playing your song.
1: You're listening to
9: Non-Stop Hits.
10: No talk.
11: No talk.
10: Just you and the music.
11: Back to
10: back starts now.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर. अभी सिर्फ 500 रुपए में ऑफर लगाओ, 3000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ, अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार. जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें.
4: सिटी एफएम 89.
5: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस. जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
6: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
5: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक.
6: जो तुम चाहो,
5: डाउनलोड द ऐप नाउ.
4: वी आर
2: सिटी एफएम 89.
0: यू आर लिसनिंग टू
2: नॉन स्टॉप हिट्स.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर. अभी सिर्फ ₹500 में ऑफर लगाओ, 3000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ. पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार. जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें.
2: फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @cityfm89
3: फॉर योर इन्फिनिट स्क्रॉलिंग रील फिक्स.
1: मुबारक हो, यू फोन एंड टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिलीज मिलकर हो गई हैं मोर देन 7 करोड़. तो यू फोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यू फोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर.
4: सिटी एफएम 89.
5: यू आर लिसनिंग टू
6: नॉन स्टॉप हिट्स.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 5 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Trending today.
6: Meta is once again going after revamping Instagram's recommendation algo to boost original content and penalize accounts that lift posts from others. With the change, accounts that reshare photos or carousels without material edits could see their reach throttled.
7: City FM 89.
8: Chicken pox yaad hai. Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
9: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
10: एग्जाम

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट, मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।

0: पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: मुबारक हो, यूफोन एंड टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिलीज मिलकर हो गई हैं मोर देन 7 करोड़। तो यूफोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यूफोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर।
2: अवेल फ्लैट 30% ऑफ एट द डाइनर्स ग्रेट फेस्टिव सेलिब्रेशन। Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
3: City FM 89.
4: The first time at the disco. When you love someone, it's natural, not demanding. Holiday with friends. Retro cinema.
5: Hey, where did we go? Days when the rains came.
4: Through music that speaks to you. Reconnect to your past with me, Amar Nasir, on Retro 89.
6: Every Sunday evening from 7 p.m. to 9 p.m., only on City FM 89.
7: 89.
8: We're playing your song.
9: You're listening to
10: Non-Stop Hits.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6:30 p.m.
3: City FM 89.
4: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
5: Chicken pox yaad hai. Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
6: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
7: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर. अभी सिर्फ 500 रुपए में ऑफर लगाओ, 3000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ, अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है नए.

0: फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर। इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: मुबारक हो, यू फोन एंड टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिलीज मिलकर हो गई हैं मोर देन 7 करोड़। तो यू फोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यू फोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर।
2: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी, आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया।
3: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस। जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
4: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
3: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक।
4: जो तुम चाहो,
3: डाउनलोड दी ऐप नाउ।
5: टेलीनॉर की वीकली एक्सट्रीम प्लस ऑफर लगाओ, 550 रुपए में 60 GB डेटा, 15,000 टेलीनॉर और 300 दूसरे नेटवर्क मिनट्स पाओ। अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा हफ्ता बेफिक्री से अनलिमिटेड स्ट्रीमिंग और सोशलाइजिंग करते जाओ, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार। जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें।
0: पीट हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
6: अ वेल फ्लैट 30% ऑफ एट द डाइनर्स ग्रेट फेस्टिव सेलिब्रेशन। Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
1: Mubarak ho! You phone and Telenor ki calling families milkar ho gayi hain more than 7 crore. To you phone se Telenor and Telenor se you phone karo latadat calls kisi bhi package pe aur raho connected more than ever before.
7: The first time at the disco.
8: When you love someone, it's natural, not
7: demanding. Holiday with friends. Retro cinema.

0: अपने कमाल बैकअप से AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: City FM 89, we're playing your song.
2: You're listening to
3: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: A Vail flat 30% off at the Diner's Great Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
4: Dulux दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी. आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया.
5: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस. जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
6: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
5: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक.
6: जो तुम चाहो,
5: डाउनलोड द ऐप नाउ.
7: सिटी एफएम 89.
8: Attention, all party starters, weekenders, all-nighters, celebration seekers, beat kickers, thrill seekers, disco lovers, party hoppers, shakers, movers, non-stoppers. It's time to get together and dance, because this is Beat Camp.
9: Every Friday and Saturday, 10 p.m. to midnight, only on City FM 89.
10: Don't adjust your dial.
9: This is
11: City FM 89.
0: You're listening to
12: Nonstop Hits.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: चिकन पॉक्स याद है, ये शिंगल्स बन के वापस आ सकता है, कभी सोचा भी नहीं था। तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें।
3: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें। खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो। ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है। मज़ीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें।
1: You're listening to
0: Beach Camp.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 11 PM.
2: This time check is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: Trending today.
5: Meta is once again going after revamping Instagram's recommendation algo to boost original content and penalize accounts that lift posts from others. With the change, accounts that reshare photos or carousels without material edits could see their reach throttled.
6: City FM 89.
7: टेलीनॉर की वीकली एक्सट्रीम प्लस ऑफर लगाओ 550 रुपए में 60 GB डेटा 15,000 टेलीनॉर और 300 दूसरे नेटवर्क मिनट्स पाओ अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा हफ्ता बेफिक्री से अनलिमिटेड स्ट्रीमिंग और सोशलाइजिंग करते जाओ क्योंकि टेलीनॉर है ना यार Woohoo! जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें
8: Hold on! Special delivery coming through!
9: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
10: We're now live on WhatsApp.
11: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
10: It's as easy as 03142-898989.
9: Save our number now and WhatsApp us.
12: City FM 89. We're playing your song.
10: You're listening to
13: Beat Camp.

0: अपने कमाल बैकअप से AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: मुबारक हो, यूफोन एंड टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिलीज मिलकर हो गई हैं मोर देन 7 करोड़। तो यूफोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यूफोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर।
2: होल्ड ऑन, स्पेशल डिलीवरी कमिंग थ्रू।
3: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
4: We're now live on WhatsApp.
5: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
4: It's as easy as 03142-898989.
3: Save our number now and WhatsApp us.
6: City FM 89. Sounds different.
4: You're listening to
6: Beach Camp.